वनकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आरजे एंडी, और इस प्रोग्राम में आपके लिए आपके फरमाइश के गाने बजेंगे. बट दिस इज अ वेरी स्पेशल डे. ये ऐसा दिन है वैलेंटाइंस डे का, जहां पे आपके जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन ये जस्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल डे जहाँ पे पूरी दुनिया एक्चुअली आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में होड़ में होती है हर एक की, यू नो, पोस्ट की, कौन बढ़िया सी पोस्ट डालेगा सोशल मीडिया पे, शोइंग लव एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ, यू नो, नाइन यर्ड्स दैट गो विद दिस वैलेंटाइंस डे. लेकिन with that being said, for all those you know, there's always, you know, people who are going to be, you know, loving whosoever they love all 365 or 366 days of a year, depending on whether it's leap year or not, unke liye ye jo din hota hai Valentine's Day ka, I think for them it is very difficult to, you know, just because other people are doing, you know, apna love pyar jata rahe hai, तो दे फील लिटिल काइंड ऑफ आउट ऑफ द वे, बिकॉज उनके लिए तो मतलब प्यार जताना इज प्रिटी मच एवरी डे वाला अफेयर होता है. तो विद दैट बीइंग सेड, आज के इस प्रोग्राम में जो पहला वाला गाना है, ये गाना हमारे हर वैलेंटाइन डे की रिक्वेस्ट में हमेशा आता है, और ये गाना इतनी बार बजा है, लेकिन ये आज का स्पेशल गाना है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे. और जिन्होंने भी गाना रिक्वेस्ट किया है उनके नाम आपको बताएंगे गाने के बाद में. बट फॉर नाउ यू गो अहेड एंड लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग. This is kind of, you know, anthem that plays pretty much on every Valentine's Day on Aapki Farmaish on Shuddh Desi Radio. Here you go.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का कार्यक्रम ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट आरजे एंडी। और इस गाने की रिक्वेस्ट जो है, चाहे मैंने बोला था आपको कि ये ऐसा गाना है जो हमारे आज तक की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो एवरी आपकी फरमाइश प्रोग्राम दैट वी डू अराउंड वैलेंटाइंस डे, दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सो मेनी पीपल। तो बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग केम टू अस फ्रॉम किरण बोयापति, संजना एंड किरण। सो थैंक यू गाइज फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। आपकी फरमाइश के गाने इस प्रोग्राम में चलेंगे। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम क्योंकि वैलेंटाइंस डे है आज। में जनरली होता ऐसे है कि इट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर वैलेंटाइंस डे के आसपास में हमारा शो होता है, बट आई थिंक टुडे यू आर listening this particular show on the day of Valentine's Day, which is supposed to be the most romantic day of all other 365 days. क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं कि इट इज वन ऑफ दोज डेज वेयर पीपल आर यू नो एक्सप्रेसिंग देयर लव। तो आप सुन रहे हैं इश्क वाला वैलेंटाइन का आपकी फरमाइश का प्रोग्राम, जहाँ हर धड़कन में है प्यार, हर शब्द में है एहसास और हर गाने में छुपी है किसी की अधूरी या पूरी मोहब्बत। तो आज का ये जो शो है आपकी फरमाइश का, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हम बजा रहे हैं, जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी का इंतज़ार करते हैं, या जो सिर्फ प्यार में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों With that being said, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। सो फॉर ऑल दोज फोक्स हु आर लिसनिंग टू मी ऑन द ऐप और ऑन आवर रेडियो, यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट समथिंग रियल क्विक ऑन दिस डे ऑफ वैलेंटाइंस डे। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट आपकी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए। एज सुन एज वी गेट दैट रिक्वेस्ट, हम आपके लिए वो रिक्वेस्ट चलाएंगे। विथ दैट बीइंग सेड, अभी जा रहे हैं हमारे अगले गाने की तरफ। तो ये जो अगला गाना है, ये भी रिक्वेस्ट हमको आई है। आई थिंक दिस इज कमिंग टू अस फ्रॉम कोलंबस ओहायो। नाम आपको गाने के बाद में बताऊंगा, बट बिफोर आई गो ऑन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, आज है 14 फरवरी। हाँ, अभी एक महीने बाद, दैट इज ऑन 14th of March, शुद्ध देसी रेडियो हैज ऑर्गेनाइज द होली एंड काइट फेस्टिवल। दिस इज अवर ट्रेडिशन दैट वी हैव बीन डूइंग दिस होली इवेंट फॉर आई थिंक लास्ट 6-7 years नाउ, एंड इट्स गोन बी एट द सेंटिनियल पार्क। थोड़ा सा लोकेशन, मतलब विद इन द पार्क इज गोन बी लिटल डिफरेंट, बट दैट इज हैपनिंग ऑन 14th of March, सो डू नॉट मिस दैट। टिकट्स आर अवेलेबल राइट नाउ ऑन shuddesireadio.com, वहाँ पे जाके टिकट खरीदिए। एंड देन आई सी यू गाइज देयर on at the Holi and Kite Festival, which is going to be a phenomenal, phenomenal thing as it has been for past so many years. With that being said, let's move on to our next song right here. Here you go. And then for those

तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी फरमाइश का प्रोग्राम। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी। और अभी जो हमने गाना चलाया था फ्रॉम मूवी तमाशा, अगर तुम साथ हो, संग ब्यूटिफुली बाय अरिजीत सिंह एंड अलका याग्निक। और गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है अंकिता और अरविंद की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। दिस इज कमिंग फ्रॉम कोलंबस ओहायो गाइस। सो थैंक यू वेरी मच अरविंद एंड अंकिता फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। एज आई एम टेलिंग यू, वी आर यू नो, व्हेन वी प्ले दिस आपकी फरमाइश प्रोग्राम या हमारा जो दूसरा होता है दिल से देसी, वी हैव सो मेनी लिसनर्स दैट लिसन टू अस लाइव एंड देन देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स दैट वी रन थ्रू आउट द डे। तो आज के इस प्रोग्राम में जो बढ़िया से बढ़िया गाने आए हैं, आई एम सो हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू। अगला वाला जो गाना है दैट इज किसी की एक्चुअली जीवन कहानी का एक कुछ हिस्सा है, और उसके साथ में दे हैव सेंट अस देयर लिटिल यू नो इनसाइट टू देयर लव स्टोरी। तो उनकी मुलाकात कुछ कॉफी शॉप में हुई थी, कुछ पहली नज़र। तो जैसे बोलते हैं ना, दो अजनबी गलती से टकराना फिर मुस्कुराहट, और इसमें ऐसे हुआ कि उनका नंबर तो हरे लिया ही नहीं। तो फिर दूसरी दिन उसी टाइम उसी शॉप में जाना और फिर उनसे मुलाकात होना, और उस टाइम में उन्होंने उनका नंबर लिया, मतलब एक दूसरे ने नंबर लिया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे हैव बीन इन टच एंड दैट बेसिकली देयर फ्रेंडशिप देयर लव एक्चुअली वॉज यू नो दे गॉट मैरिड ऑन 14th of February इज वेल। तो विद दैट बींग सेड, ये जो गाना है, गाने की रिक्वेस्ट किसने भेजी है और ये किसकी स्टोरी थी ये मैं आपको बताऊंगा गाने के बाद में। बट बिफोर दैट लेट मी प्ले दिस सॉन्ग। इट्स अ वेरी वेरी बढ़िया सा सॉन्ग है, एंड You take a listen, here you go. And for all those folks who are joining me here on our Shuddh Desi Radio's Facebook Live, if you are watching this right now and if you want to send us your आपकी फरमाइश अगर हमारे रेडियो में चलनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप में जाइए एंड देयर इज अ फीचर प्ले रिक्वेस्ट अ सॉन्ग वाला। तो यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू मेंशन यू नो वेयर यू आर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम, बिकॉज वो बढ़िया रहता है कि यू नो जैसे इंडिया में हम लोग सुनते थे वो प्रोग्राम, आज तक झुमरी तलैया से हमको कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बट देर हैव बीन यू नो सो मेनी प्लेसेस दैट वी गेट रिक्वेस्ट। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस गाने के पहले में जो चलाया था दैट केम फ्रॉम कोलंबस ओहायो। सो विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर यू। बढ़िया सी प्रेम कहानी की है, और टेक अ लिसन, हियर यू गो।

दोस्तों, तो ये अभी जो गाना आपने सुना, पहला नशा पहला खुमार, ये रिक्वेस्ट हमको भेजी है प्रतीक और गिव मी वन सेकंड, प्रतीक और सोनाली ने. दिस इज देयर लव स्टोरी का ये सॉन्ग था जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको. तो ये गाइस, यू नो, आई थिंक आपने हमारे साथ में आपकी स्टोरी शेयर की, जैसे जहां वो यू नो कॉफी शॉप में शुरू हुई एंड इट कल्मिनेटेड इनटू बोथ ऑफ यू गेटिंग मैरिड. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू गेटिंग मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे. दैट इज डेफिनेटली फिनोमिनल. वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स. दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी, और आज के इस प्रोग्राम में जैसे हम गाने चला रहे हैं जो आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हैं, तो सेंड योर रिक्वेस्ट. आई एक्चुअली हैव फ्यू रिक्वेस्ट दैट केम इन जस्ट नाउ. तो अगर इस वैलेंटाइंस डे पर आप किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, कोई पुराना प्यार, कोई अधूरी मोहब्बत, या फिर वो जो आज भी दिल के सबसे करीब है, दिस इज द मोमेंट गाइज फॉर यू टू सेंड इट. वैसे देखा जाए तो यू नो हर वैलेंटाइन पर फूल या चॉकलेट या गिफ्ट की जरूरत नहीं है. कभी कभी एक ऑनेस्ट सा मैं हूं ना, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर लव पार्टनर और योर लव और योर वैलेंटाइन. विद दैट बींग सेड, लेट्स प्ले दिस फिनोमिनल रिक्वेस्ट दैट केम इन. गाना जो है वो है अराउंड 60s का, बट आज भी उतना ही मधुर है और उतने ही उसमें जो जज्बात है. यू कैन लिसन टू द सॉन्ग एंड टेल अस हाउ यू लाइक दिस सॉन्ग. गाने के बाद में बताएंगे गाने की रिक्वेस्ट कहाँ से आई है. हियर यू गो.

दोस्तों, ये संगम मूवी का गाना था 1964 वाला, लेकिन यहाँ पे तो जिक्र हो रहा है प्रेम पत्र का। और आज के ज़माने में आई एम नॉट श्योर कोई किसी को पत्र यानी कि लेटर भी लिखता होगा। आई जस्ट हर्ड समटाइम, यू नो, आई थिंक लास्ट वीक और उसके पहले में, कि इंडिया में वो जो लाल कलर के पोस्ट के डिब्बे होते थे जहाँ पे यू कैन एक्चुअली मेल योर लेटर या पोस्ट कर सकते थे, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ डिसीशन आई थिंक टेकन बाय इंडियन पोस्टल सर्विस दैट दे आर गोना रिमूव ऑल दीज, यू नो, रेड डब्बे जो थे। ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे पीपल यूज़ टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, चाहे वो प्यार के खत हो या कुछ, यू नो, अपनी फैमिली के साथ में कुछ, यू नो, बातें हो। दैट यूज़ टू बी इन दोज डेज ऑन लेटर्स। आई थिंक इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल दिस जेन ज़ी हियर, आई थिंक दे विल प्रॉबली नॉट इवन, यू नो, फैदम द आइडिया ऑफ समवन एक्चुअली राइटिंग फॉर, यू नो, मे बी 2 or 3 pages और वट एवर एंड देन मेलिंग इट। एंड इट वुड टेक मे बी डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर मेलिंग इट, वेयर टू दे आर मेलिंग इट टू, इट वुड टेक मे बी 1 week to 3 or 4 weeks टू गेट दैट लेटर। एंड जिसको भी लेटर मिलेगा, वो खत मिलेगा, दे विल राइट अ रिस्पॉन्स एंड दैट दैट विल टेक अनदर 4 weeks। वो उस ज़माने की बात है, जेन जी को समझाना काफ़ी काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी समीर देशपांडे की तरफ से। समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। उस ज़माने में लेके गए आप हमको जहाँ पे जो प्यार का इजहार या प्यार की जो बातें होती थी वो खतों के जरिए होती थी। उस ज़माने में फ़ोन भी इतना कॉमन नहीं था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग। बट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगेन टुडे इज़ 14th of February, वैलेंटाइंस डे। अ मंथ फ्रॉम नाउ यू गोना हैव अनदर चांस टू enjoy the Holi and Kite Festival organized by Shuddh Desi Radio. This has been a tradition of Shuddh Desi Radio to bring all the Desi community and all the local community together. और आपको अगर ये मौका चाहिए कि यू नो, आज है 14th of February, अ मंथ फ्रॉम नाउ विच इज़ ऑन 14th of May, यू शुड कम टू होली एंड काइट फेस्टिवल एंड एन्जॉय इट विथ योर लव्ड वंस एंड वी विल बी ग्लैड टू, यू नो, होस्ट यू आउट देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन shuddhdesiradio.com। विद दैट बीइंग सेड, मैं अभी जो अगला वाला गाना चलाने जा रहा हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे गाने आएंगे जो अरिजीत सिंह के रहेंगे, बिकॉज़ यू नो वो मखमली आवाज़ और वो जो, यू नो, दैट वॉइस दैट एक्चुअली मेक्स कनेक्शन एंड दैट इज़ बेसिकली लव एंथम। जो भी कोई गाना सुनता अरिजीत सिंह का, दैट इज़ व्हाट दे बेसिकली से। बट विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। हियर यू गो, यू आर गोना बी लिसनिंग टू द सॉन्ग फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। हियर यू गो।

दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस फिनोमिनल एपिसोड ऑफ आपकी फरमाइश ब्रॉट टू यू ऑन वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे स्पेशल आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. एंड दिस बेसिकली ये जो अभी जो सॉन्ग था दैट एक्चुअली केम टू अस फ्रॉम भरत. And Bharat actually, sorry about that guys, this actually came to us from Bharat. Thank you Bharat for sending that request to us. Now let's talk about ye Valentine's Day ka jo special, you know, itna abhi that has with social media, it's definitely grown to event or a day wherein a lot of retailers actually are banking on, you know, a lot of sell on this day, whether it is roses, whether it is chocolates, whether it is any kind of gifts, teddies, you know, you name it. It's pretty much all the storefronts actually have it. Aur ye jo वैलेंटाइंस डे का जो स्टॉकिंग चालू होता है स्टोर में, दैट्स अबाउट 4-6 वीक्स बिफोर इवन द वैलेंटाइंस डे एक्चुअली ऑकर. सो अराउंड, यू नो, एज सून एज न्यू ईयर्स इज डन, आई थिंक यू नो ऑल द रिटेलर्स आर प्लानिंग टू स्टॉक देयर स्टोर्स विद द मर्चेंडाइज फॉर वैलेंटाइंस डे. गो टू एनी ऑफ दीज यू नो स्टोर फ्रंट्स, दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू फाइंड. तो एक मेरी याद है जब हम लोग पुणे में थे, आई रिमेम्बर अगेन, यू नो, ग्रीटिंग कार्ड्स यूज्ड टू बी अ बिग थिंग ऑन एट दैट टाइम. अगेन पीपल वुड यू नो गिव ग्रीटिंग कार्ड टू देयर लव्ड वंस ऑन वैलेंटाइंस डे एटसेट्रा. बट दैट टाइम, टॉकिंग अबाउट 90s की बात कर रहा हूँ, सो देयर यूज्ड टू बी अ बिग, यू नो, अ बिग पॉलिटिकल पार्टी देयर. एक्चुअली द लीडर ऑफ इट वॉज कम्प्लीटली अपोज इन ब्रिंगिंग दिस वेस्टर्न कल्चर इन टू इंडिया. और उस टाइम में बहुत, मतलब कॉलेजेस में एंड ऑल दैट, ऑल द किड्स, मतलब लड़के लड़कियाँ वो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए देखते थे. बट विद दिस you know, development of the political parties and all the student unions getting involved into it, bahut sare colleges mein this was, yes, it chup chup ke manaya jata tha. At least मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, जहाँ पे ये ऐसे कुछ होता था. They were completely opposed to celebrating these Western cultures, bringing that Western culture, etc. But I have heard now that things have changed, और इतनी बदल गई है कि वहाँ पे I think whatever that political party that was there, that's probably gone, that's probably wiped out in all the elections and all that. And all the Gen Z and all the generation there, they are big into celebrating Valentine's Day. They have kind of, you know, adopted that whole Western culture back in India. So, जैसे बोलते हैं ना, कभी कहा ही नहीं तुझसे, पर हर दुआ में तेरा नाम लिखा है. वो पूछते हैं हम क्यों खामोश रहते हैं, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि हमने दिल उन्हीं के नाम कर रखा है. दोस्तों, विद दैट लेट्स टेक अ लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग. हियर यू गो. अगर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और आपको किसी को डेडिकेट करना है आज के इस स्पेशल अवसर पर, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस info@desireadio.com. हियर यू गो.

200 निलॉय की गाने की रिक्वेस्ट और दिस ऑन द स्पेशल वैलेंटाइंस डे आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. कुछ चंद ही मिनट बचे हैं, अराउंड 10 मिनट. सो इफ यू स्टिल वांट टू गेट योर रिक्वेस्ट इन, यू स्टिल हैव गुड यू नो चांस दैट योर सॉन्ग विल प्ले ऑन दिस एपिसोड. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यू नो हाउ एवरीवन इज इन द मूड फॉर सेलिब्रेटिंग द वैलेंटाइंस डे. स्टोर फ्रंट की बात की हमने, ऑफ कोर्स जेन ज़ी इज देयर एंड देन यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन वांट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो विद दैट बीइंग सेड, किसी ने एक गाना भेजा है. दिस इज फ्रॉम द 80s और बढ़िया सा गाना है. सो लेट्स टेक अ लिसन टू दैट सॉन्ग राइट हियर. ओ हियर यू गो विद दैट सॉन्ग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. जो 80s वाला जो सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे से बोल है उस गाने के. और गाने की रिक्वेस्ट हमको किसने भेजी है वो तो आपको पता है, हम लोग गाने के बाद में बताते हैं. सो हियर यू गो.

ऑल राइट दोस्तों, ये गाना जो था दैट एक्चुअली वाज फ्रॉम मूवी याराना। गाने की रिक्वेस्ट आई है संजीव की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये प्रोग्राम इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, और एक गाना शायद बच सकता है अभी, तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। बट बिफोर दैट, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू फॉर हमारे साथ में जुड़ने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार हमारे तरफ जो है, यू कीप ऑन शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव टू अस, दैट्स अ रियल यू नो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर अस। विद दैट बींग सेड, फॉर ऑल दोज फोक्स who don't have a Valentine, or who are actually in the process of, you know, making one of their, you know, friends or someone as their Valentines, उनके लिए एक बढ़िया सा गाना। With all that being said, I'm signing off from the studios of Shuddeshi Radio, and keep listening to one of the best radios that you can actually find in the continental US and all over the world, actually. So here you go. Padhya Sagana, take a listen. So with that being said, I just wanted to once again wish you all a very, very happy Valentine's Day. रात चुप है, चांद भी खामोश है, बस एक तू है जो ख्यालों में हर वक्त मौजूद है। वेल, एज गैरिसन कीलर सेज, डू गुड वर्क, स्टे हैप्पी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, डू गुड वर्क।

आप सुन रहे हैं आपकी होस्ट शालिनी को, प्रोग्राम का नाम है हार्ट टू हार्ट ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं हम आज दर्द की, दर्द के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दर्द पेन हमें कैसे बदल देता है। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं, अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और फॉलो करिए मुझे और शुद्ध देसी रेडियो को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ताकि आप ये अच्छी वाली बातें मिस ना कर सकें। ये जो बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता, निदा फाजली साहब की दो ये खूबसूरत लाइनें। और मैं ये बात करी थी कि दर्द की एक बड़ी खासियत होती है, दर्द की खासियत होती है कि वो हमें बदल देता है। और

Hello and welcome everybody. This is your host Shalini after a long, long time in Shuddh Desi Radio Heart to Heart program में. इस साल का ये मेरा पहला Heart to Heart show है. बहुत दिनों के लिए मैं गायब थी, वापस आ गई हूँ अभी. तो एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए कि ऐसा हुआ है क्या आपके साथ में कभी कि आप ये इतना हैप्पी न्यू ईयर सुन के परेशान हो गए हों. और न्यू ईयर की बात होती है, न्यू मी की बात होती है, और इस नए साल में जहन में ये सवाल तो आता होगा ना कि चेंज क्या हुआ है. बस एक डेट, एक तारीख ही तो बदल गई है, बाकी तो कुछ बदला नहीं. हम आप सब वैसे के वैसे ही रहते हैं. बहुत से रेजोल्यूशंस हम ज़रूर बनाते हैं लेकिन वो उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं. तो नया क्या होता है नया साल में तारीख बदलने के अलावा. अगर आप लोगों के मन में भी ये ख्याल है नए साल के बारे में तो मेरे पास आपके लिए कुछ है कि कभी कभी दूर तक बिखरे हुए कुछ नहीं में भी खुद से मुलाकात हो जाती है. हाय, मैं हूँ शालिनी और आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो. और इस साल, इस नए साल आपके और भी करीब जाने का वक्त आ गया है. एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ पे दिल की गहराइयों से होंगी सच्ची बातें, आपके दिल की बातें मेरी जुबानी हार्ट टू हार्ट में. तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बेतहाशा बेइंतहा बधाई हो. जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बड़े इंतज़ार, बड़े गैप के बाद मैं ये शो लेके आई हूँ. कुछ ये नया साल कुछ अच्छा नहीं, शुरुआत अच्छी नहीं हुई मेरे लिए. फिज़िकली मैं बोलूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए आ रहे हैं अभी भी मेरी सेहत को लेके. तो इसकी वजह से मैं गायब थी ऑलमोस्ट दो महीने के लिए, नहीं कर पा रही थी शो. तो बात कर रहे हैं नए साल में बदलाव की. तो इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं ना कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू यू, न्यू मी. वन काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ अ बोरिंग साल लगने लगता है सुनने के बाद में ये. तो जहन में मेरे हमेशा ये सवाल आता है कि ये भाई बदलाव हुआ क्या है, क्या बदला है नए साल में हमारे. अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर में क्या बदलाव आया है. तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कैलेंडर की क्या तारीख ही बदल जाती है, या हम में आप में भी कुछ बदलाव होता है. कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे अंदर वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं. चाहे वो किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, हमारी पसंदें क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं. अगर एक बदलाव होता है थोड़ा बहुत, तो अगर कुछ नया आ गया, एक सपना हमारा पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई, तो दूसरी ख्वाहिश उसकी जगह ले लेती है. लेकिन वो एक जो ख्वाहिश है, वो जो सपना है, वो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती है हमारे जहन में. तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आया. हमारी चॉइसेस होती हैं, हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, कि लोगों के साथ हम बात करना चाहते हैं, ये सब तो कभी नहीं बदलता ना. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो कि हम चाहते हैं कि बदल जाएं लेकिन वो नहीं बदलती हैं. जैसे कि क्या ही बढ़िया होना कि नए साल में किसी के कुछ कहने से हमारा जो मूड ना ख़राब हो, हमारे ऊपर उसकी किसी बात का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. हम ये चाहेंगे कि ये बदलाव आ जाए ना, ये चेंज न्यू ईयर में. पर क्या वो पॉसिबल है कि किसी की बातें हमें इफ़ेक्ट ना करें? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये बदल सकते हैं? या फिर किसी ने कुछ कहा, या कुछ हमारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के चलती है, हम अपने आप को और दूसरों को जज करने लगते हैं. तो क्या ये हमारे बस में है कि हम दूसरे की बातों को अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट ना लाने दें और अपने आप को जज ना करें, या अगले इंसान को हम जज ना करें? या बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और जो हम बदलना चाहते हैं बदल नहीं सकते हैं. अब हालात कैसे होते हैं, वक्त कैसे बदलता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें उनका योगदान रहता है, इन सारी परिस्थितियों में जो मायाजाल होता है. लेकिन
जो कुछ भी हो, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. जो ये हमारे बाहर की चीज़ें होती हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं और हम उन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो बदलाव ला सकते हैं. और शायद हम उन बदलावों की बात करते नहीं हैं. नए साल में हम रेजोल्यूशंस तो लेते हैं, वो कुछ डिफरेंट ही टाइप के होते हैं, या शायद जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है रेजोल्यूशंस का, या जो सब है कि हमें अपनी सेहत बनानी है, हमें ये गोल करना है, वो गोल करना है, उस सब के माया जाल में रहते हैं. लेकिन वी नेवर ट्राई टू गो एक्चुअली इनसाइड एंड चेंज, कि जो हम अपने अंदर चेंज कुछ चीज़ों का कर सकते हैं, जिनकी वजह से शायद बाहर की चीज़ों में भी बदलाव आ जाए. तो अगर आपको थोड़ा सा ये गुत्थी लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो कोशिश करें कि इस प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स को लेके मैं आऊँगी, और उस पर हम बात करेंगे कि क्या है ऐसा जो हम बदल सकते हैं और क्या है जो नहीं बदला जा सकता. तो उसके लिए हमें परेशान और हताश और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो इसी सब की बातें करते हैं इस प्रोग्राम में. पहले सुना देती हूँ आपको ये गाना, जो पहले बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन अभी सुनते हैं इसको फुल वॉल्यूम में.

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: वेलकम बैक दोस्तों, हार्ट टू हार्ट में विद योर होस्ट शालिनी। बात कर रहे हैं हम आज नई शुरुआत के, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम इतने सारे रेजोल्यूशंस तो लेते हैं, लेकिन क्या है जो एक्चुअल में बदलाव हैं, जो हम ये न्यू यू की बात करते हैं, न्यू मी की बात करते हैं, एक्चुअली में वो है क्या, और क्या क्या जेन्युइनली, क्या सही मायने में वो चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे कि हम वो अचीव कर सकते हैं और यू नो कुछ एक्चुअल में बदलाव हमें दिखाई पड़ेगा, सही मायने में पॉजिटिव रियल बदलाव और चेंज। तो अब मुझे लगता है कि इस कड़ी में जो सबसे पहले नंबर आता है ना, बाउंड्रीज़ का नंबर आता है। बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्रिकेट आप खेलते होंगे, देखते होंगे, जो क्रिकेट की बाउंड्रीज़ होती हैं, तो जैसे कि क्रिकेट की बाउंड्री होती है, वैसे ही लाइफ की भी बाउंड्री होती है। दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके जो है उन्होंने बॉल मारी और खेलते खेलते कभी जो है बॉल बाउंड्री के उस पार चली जाती है, और अगर कभी अगर उड़ के चली जाए यानी कि सिक्सर लग जाए तो उसकी अपनी अलग ही बात होती है, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो ये बाउंड्री है जो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, वैसी वो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। और फ़र्क इतना है कि क्रिकेट में जब बॉल जाती है बाउंड्री के उस पार तब मज़ा आता है, लेकिन लाइफ में जब आप अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हैं और बाउंड्री के अंदर खेलते हैं और आप लोगों को आपकी बाउंड्रीज़ की कद्र करना और उनकी रिस्पेक्ट करना बताते हैं तो मज़ा आता है लाइफ में। तब आप सुकून से, शांति से जी सकते हैं और इन रिश्तों को निभा सकते हैं। तो ये जो दीवारें बनाना है, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि आप पूरी एक वॉल ही बना लें और किसी को उधर आने ना दें, बात नहीं, लेकिन हर चीज़ की, हर रिश्ते की, हर बात की एक सीमा होती है। तो ना तो आप उस सीमा को लांघें, ना किसी और को उस सीमा को लांघने दें। मैं उस बात की बात कर रही हूँ, उन्हें लोगों को, आपको उन्हें बताना चाहिए कि ये बाउंड्री है, ये और ये वो पार नहीं उन्हें करनी चाहिए, वो पार नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तभी एक, मुझे ऐसा लगता है और ये मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से बता रही हूँ कि ज़िंदगी में जो वो खुशहाली आती है ना, जब आप एक फ्री विल से तब आप रह रहे होते हैं और आपको मालूम है कि आपने क्या हक दूसरों को दिए हैं और क्या नहीं दिए हैं, तो दैट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, कि उनके लिए, अदर्स के लिए मुझे, मैं नहीं बता रही हूँ कि उनके लिए वो कितना ईजी होगा, पर आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि किसी को जब ये बता देना कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं और आप किसी की लाइफ में कोई सेकेंड या थर्ड ऑप्शन नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, जब आप ये लोगों को बता दें और ये उन्हें ये पता लगे आपकी वैल्यू कि आप कितना डिज़र्व करते हैं और आप को उन्होंने चुना या आप उनकी लाइफ में हैं, ये उनके लिए किसी ट्रॉफी से बड़ी बात नहीं है और उनको इस बात का, इसका गर्व होना चाहिए कि वो खुशी से सबके साथ वो शेयर करें कि कितनी अहम शख्सियत या कितने अहम इंसान और चीज़ आप उनके पास में है, और गर्व से बताएं, सीने से लगाएं कि हाँ यार ये मैंने कमाया, ये दोस्त है मेरा, ये रिश्ता है मेरा, यू नो इतना जब आपको वैल्यू करें और आपकी इतनी वर्थ रखें, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा और उन्हें यह समझाना पड़ेगा आपके आसपास के लोगों को, जिनको, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या करीबी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं लाइफ में। किसी को भी आप अपने आप को ऐसे हल्के में ना लेने दें, सस्ते में ना ट्रीट हो जाने दें, और ये हमारा हक है कि यू नो वैल्यू, सेल्फ वर्थ होना और ख़ुद की वैल्यू करना और ख़ुद की वैल्यू करवाना एक आर्ट भी है और ये आपका हक भी है। तो जब आप ऐसी बाउंड्रीज बनाते हैं और जब आप लोगों को आसपास अपने लोगों को ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि उनकी लिमिट क्या है, या आपके साथ वो मजाक भी कर रहे हैं या किस तरीके के बात कर रहे हैं और किस बात के आगे वो बात नहीं कर सकते, ये उन्हें क्योंकि कुछ पता नहीं होता, उन्हें नहीं पता है कि आपको इज्जत कैसी देनी है, किस तरीके की इज्जत आप चाहते हैं या आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा। और अगर आपने ये बाउंड्रीज अपने चारों ओर नहीं खेल खींची तो होता क्या लाइफ में कि फिर आपके अनड्यू एडवांटेजेस लोग उठाने लगते हैं और यू नो दे डोंट यू नो वैल्यू यू और दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड यू डोंट वॉन्ट दैट। क्योंकि और जब ये सारी मैं बात कर रही हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन बन जाएं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ रियलाइजिंग योर सेल्फ वर्थ और कैसा आप लोगों को चाहते हैं कि वो आपके साथ ट्रीट करें, इट्स अबाउट दैट। तो वो बाउंड्री होना, एक सटल लाइन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं आपने अभी तक ये शुरुआत करी या अचीव किया तो मेरे ख्याल से ये आपका नया साल का एक चेंज होना चाहिए इंटरनली कि आप सीमाएं खींचें, लोगों को बताएं कि कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ इसके बाद उनको रुक जाना है। तो आप सोचिए इसके बारे में और सुनिए ये बेहतरीन से दो गाने। मिलती हूँ मैं आप गाने गाने से उसके उस पार मिलूँगी और भी अच्छी बातें करूँगी और बातें बताने वाली हूँ आपको कि व्हाट एल्स कैन बी डन टू चेंज एक्चुअली द गुड चेंज इन द न्यू ईयर, जिसके लिए आप खुशी से और यू नो गर्व के साथ कह सकेंगे कि हाँ नाउ दिस इज़ न्यू मी, दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ मी। तो मिलती हूँ आपको इन गानों के उस पार और

कि तुझ संग बांध ही मैंने ये डोरी रहे, और मेरी डोरी मैंने बांध ली है आप लोगों के दिलों के साथ। हाय, मैं हूं शालिनी और आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आज एक नए टॉपिक पे बात कर रही हूं, न्यू यू की बात कर रही हूं, जो हर सबका नए साल का एक रेजोल्यूशन होता है, तो उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। और शुद्ध देसी रेडियो को और मुझे फॉलो करना ना भूलें अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हों तो। हर वेंसडे को आप सुन सकते हैं मुझे हार्ट टू हार्ट शो में। आप शुद्ध देसी रेडियो को फॉलो करने के साथ आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं रेडियो पे, आई मीन फेसबुक पे शालिनी दीक्षित के नाम से, और इंस्टा पे हूँ मैं आरजे शैली के नाम से। तो ओनली फॉलो मी, डोंट सेंड मी द फ्रेंड रिक्वेस्ट, बिकॉज यूजुअली आई डोंट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट इफ आई डोंट नो पीपल। सो कमिंग बैक टू आज का टॉपिक, बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि हम लोगों के लिए एक बाउंड्री की हमने बात करी कि कैसे हम बाउंड्री खींच सकते हैं ताकि हमारी अपनी पर्सनल जीवन की सुख शांति बनी रहे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ईगो और एनीथिंग, तो मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगती है वो है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। किस चीज़ का एक्सेप्टेंस? जी हाँ, लोग जैसे हैं उनको तो हम एक्सेप्ट करें ही, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी से कोई चले जा रहा है तो जो एग्जिट्स होते हैं, जो लोगों का चला जाना होता है हमारी लाइफ से, उसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए। कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो एक अलग कहानी होती है, वो अलग किस्म के लोग होते हैं, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टोटल डिफरेंट चीज़ होती है। तो डोंट कन्फ्यूज़ योर वॉन्ट्स एंड योर नीड्स किसी भी लाइफ के किसी भी वॉक में। लेकिन क्योंकि आज इस वक्त मैं बदलाव की बात कर रही हूँ, तो रिश्तों की बात हो या लोगों की बात हो आपके आसपास, तो यू नीड टू मेक अ डिफरेंस। यू नीड टू नो कि आप उस इंसान को चाहते हैं या वो इंसान आपकी ज़रूरत है, उसके बारे में बात करिए। कि हो सकता है कि कई बार हमको बहुत लोग बहुत सारे पसंद आते हैं, कि हर चीज़ उस शख्स के बारे में हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही ना हो। हो सकता है कि वो एक रेड फ्लैग्स की दुकान हो। रेड फ्लैग्स की जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं ये रेड लाइट की बात कर रही हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इंसान वैसे बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उनका व्यवहार आपकी तरफ ऐसा हो जो कि आपके लिए सही ना हो, यानी कि वो आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके बहुत टॉक्सिक हैं, और कोई देयर इज़ नो एडिशन फ्रॉम देम इन योर लाइफ। तो ऐसे लोग अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, उनका एग्ज़िट हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस वक्त हमारा काम ये हो कि हम वो दरवाज़ा पकड़ के बंद करके ना रखें और वो दरवाज़ा खोल दें। तो लेट देम गो, लेट पीपल गो, क्योंकि जो लोग आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, सौ बातों की बात यह है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं वो हर कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में रहने की, और जो नहीं रहना चाहते दे विल जस्ट गो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। सो थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ ये है कि थोड़ा अपना भार आप कम करें। आपकी लाइफ में जो इतने सारे लोग हैं उनमें से अगर कुछ एक आध लोग हैं जिनका रिलेशनशिप की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, और जिनकी वजह से वैल्यू ऐड नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, सो लेट देम गो। और ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट सो दैट न्यू पीपल कैन जस्ट नए लोग आ सकें शायद आपकी लाइफ में। सो एक्सेप्टिंग द एग्जिट्स जो है, स्पेशली जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनकी वजह से, तो अपना आपने जो हो सकता है कि जो डोर पकड़ के रखी है, जो दरवाज़ा बंद करके के रखा हुआ है, तो शायद इसकी वजह से आपके दिल और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर आप जो थोड़ा सा डोर धीरे छोड़ देंगे तो हल्का महसूस करेंगे। तो फर्स्ट
मेकिंग सम बाउंड्रीज एंड देन एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम योर लाइफ इफ़ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ। बहुत सटल चीज़ें हैं, इसका कहने का मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक और इगोइस्ट पर्सन हो जाएं। कहने का मतलब बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग खोल के देखें कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या आपकी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है या पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को, इन जो पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में लागू करें, बाउंड्रीज की बात करें, एक्सेप्टेंस की बात करें, तो आई एम श्योर कि वंस यू स्टार्ट लर्निंग दैट, चीज़ें जो हैं और सुंदर और यू नो और नई होती जाएंगी। जो मैं न्यू यू की बात कर रही हूँ, जो नई शुरुआत की बात कर रही हूँ, वो डेफिनेटली उसका बीज रोपण तो ज़रूरी हो जाएगा। मैं तो आगे मेरे पास और भी बहुत सारे टिप्स हैं आपको बताने के लिए, विच आई एम गोइंग टू टेल राइट आफ्टर दीज ट्रैक्स। सो सुनते रहिए हार्ट टू हार्ट में मुझे शालिनी को, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

जी हाँ दोस्तों, ले छलांग छलांग मूवी से गाना सुन रहे थे। मैं हूँ आपकी होस्ट शालिनी, आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट। में बात कर रही हूँ आज नई शुरुआत की। तो नई शुरुआत में अभी तक हमने दो बातों के बारे में जिक्र किया। एक था कि हमें कैसे थोड़ी सी बाउंड्रीज लोगों को बतानी चाहिए हमारे बारे में। दूसरी हमने बात करी कि हमें जो ये लोग हमारी ज़िंदगी से जो चले जाएं, जो जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोगों का एग्जिट जो होता है वो उसको हम एक्सेप्ट करें। और दूसरी चीज़ जो है एक्सेप्ट करने की बात यह है कि हम किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करें। तो ये सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो हैं, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस और एग्जिस्ट का एक्सेप्टेंस जो है, इनके बारे में जो थर्ड चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ कि जिस जिससे मुझे बहुत सुकून मिला है लाइफ में, वो है कि किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। अभी एक्सेप्टेंस में और होपिंग, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। आप होप करें लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। अब आप सोचेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि होप करना क्या होता है ना, कि दैट इज़ वेरी अ पॉजिटिव थिंग एंड पॉजिटिव आप जोन में वो रहते हो कि आप होप कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना समथिंग इन रिटर्न, और फिर आपको वो नहीं मिलता तो वो दुख होता है, बिकॉज देन यू फील वेरी बैड। अगर आप अपने एक कंटेम्पलेशन करें अपने दिमाग में कि एक्सेप्ट और होप में फ़र्क क्या है, होप में यू जस्ट होपिंग कि ऐसे हो जाए, और उसमें अगर आपकी होप पूरी नहीं होती तो उतना, या प्रे पूरी नहीं होती तो उतना दुख नहीं होता, या यू डोंट बिकम अ नेगेटिव जोन में नहीं जाते, या उतना नहीं लगता जितना कि आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। आप होप करो उससे हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक्सेप्ट जो एक्सपेक्ट है ना, एक्सपेक्टेंस है जो, वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो लोगों से आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि अगर आपने ये काम किसी के लिए किया है तो उसके बदले में उन्हें वो करना होगा, या फिर आप ये चाहें कि फला फला इंसान हमारे साथ ऐसे ऐसे बिहेव करे, ऐसे रहे, तो वो एक्सपेक्टेंसी हो जाती है कि आप लोगों से चाह रहे हैं कि आप उनसे किसी पर्टिकुलर तरीके से आप चाह रहे हैं कि वो उनके आपके साथ में बिहेव करें या बात करें, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जब हम ये एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सुकून होता है, रिश्ते बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। तो जब आपको मतलब नहीं होता है ना, तो वो रिश्ते और जो वो प्यार होता है ना, वो बहुत ही दिल से होता है और बहुत ही खूबसूरत है। व्हेन यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, व्हेन यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग इन रिटर्न, तो बड़ा सेल्फलेस और बड़ा प्यारा सा ये रिश्ता तब होता है, बिना किसी काम का, बिना किसी कारण का, बिना किसी मतलब का। अब सोचिए कभी कि अचानक से आपको कोई मिले और आपको बोले कि यार मैंने तुम्हें ऐसे

0: आपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: सो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। Please do tell your friends and family about the Shuddh Desi Radio and do like us on

0: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: रहे हैं शुद्ध देसी रेडियो, द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA, विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध

अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: ये मौसम

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: दोस्तों डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू.
1: तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए.

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: शुद्ध

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं. ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन योर ओन सिटी.
1: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो. अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.
1: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो। शुद्ध, शुद्ध।

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।
1: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
2: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा फ्रॉम किंग खान एंड वन एंड ओनली
3: जयो हनी सिंगर।

offended. Don't angry me. Mind it. अरे मेरे जैसे डांस किसको आते हैं? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाते हैं. वो घर पे आते हैं, मुझ सीख जाते हैं, मुझ सीख के वो

आज सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है शुद्ध देसी रेडियो। मिडिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
2: जी है सर जी, मैं उन्हें पार्टी करनी सी, उन तो सारी आफ्टर पार्टी बंद हो
3: गई। यार मैं तेनु आफ्टर पार्टी ते आफ्टर पार्टी ले जा
2: इस टाइम।
3: हाँ जी
2: हो गए थे
3: तुसी, चलो मैं दिखाना तुम्हें।

आपने आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी, और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ।
1: कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।
2: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो, मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध,
3: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
4: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप इट।

का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

focus goes, energy flows. And where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows. दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

सौदागर हैं जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी।

0: आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल डालेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: खट खट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
1: ए छोरा गांडा थई गया।

0: listening to Shuddh Desi Radio. Please like our Facebook page and let us know how we're doing.
1: And do check us out at www.shuddhdesiradio.com for latest updates.
2: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

आदमी कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: हैं शुद्ध देसी रेडियो, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक।
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध।

सी रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: ऐप के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान. सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप. वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं. एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज, सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड अस रिक्वेस्ट.
1: हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी. बदलाव ही प्रकृति का नियम है. चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है. हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले. आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है. तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: जो देसी रेडियो की टीम आपके लिए लेके आएगी बॉलीवुड के हर जमाने के सॉन्ग, पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक, गजल से लेके न्यू हिट्स तक, और वो भी नैशविल कैरेक्टर, नैशविल फ्लेवर के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन हो या रात।

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: सामने वाले ने, किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप, किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी, एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड

0: सी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: I'm your host Anirudh. Keep listening to your own शुद्ध देसी रेडियो।
2: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: दोस्तों आप है हमारे साथ चक्का जाम प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: तो गाड़ी चलाते रहिए और गाने बजाते रहिए। जब तक मेरी सांसें चलेंगी ये गाने यूं ही चलते रहेंगे। बसंती,
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

म्यूजिक सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज और दोस्तों अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO जो कि हमारे रेडियो का नाम है।

0: Today I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

0: सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: तो दोस्तों, आप I-65 पे हो या I-40 पे हो या फिर I-440 हो या फिर I-24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के ज़रिए।

0: तो दोस्तों, आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड में आपकी फरमाइश का कार्यक्रम। तो आपकी फरमाइश भेजना अब बहुत ही आसान हो गया है। बोलो कैसे? यू कैन डाउनलोड आवर iOS ऐप और उसमें एक फीचर है रिक्वेस्ट सॉन्ग, जहाँ पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड वी विल ट्राई टू प्ले दैट ऑन आवर आपकी फरमाइश शो। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.

0: हार दे रही तू?
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
2: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो।

0: समय और ट्रैफिक की हाहाकार से परेशान नहीं होने का चक्का जाम में हम सुनाएंगे आपको धमाकेदार बॉलीवुड के गाने फ्रॉम 5 to 7 PM सेंट्रल टाइम जोन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी
1: बिजनेस एंड इवेंट्स विद द शुद्ध देसी रेडियो। इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स। Simply write to us at info@shuddhadesiradio.com and we will get in touch with you as soon as possible. We grow, you grow, we both grow together.

0: your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com. It is info@shuddhdesiradio.com. And we will get in touch
1: with you. दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन. और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार. कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे. अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे. और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे. तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड.
2: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा.

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी. दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है.

लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।

0: पाकिस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो,
1: सुन रहे हैं शुद्ध देसी रेडियो, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक।
2: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू बम्पर टू बम्पर एपिसोड्स।
1: It's on weekday mornings from 7 to 9. So keep on listening and tell your friends. आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप।
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ,
1: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट। लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर। ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddhdesiradio.com फॉर नॉनस्टॉप म्यूजिक।
2: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.

0: भंगड़ा
1: shaking your boat.

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप
1: स्माइलिंग। माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: अपने दिन की शुरुआत करिए हमारे साथ शुद्ध देसी रेडियो पे सुबह 5 से 7 बजे तक हमारे भक्ति संगीत कार्यक्रम में, और हमारे साथ भक्तिमय हो जाइए।
1: और उसके बाद चालू होती है दिन की भागम भाग, यानी कि आप ऑफिस जा रहे हो या बच्चों को तैयार कर रहे हो या कुछ पका रहे हो, तो उसमें आप सुन सकते हैं हमारा बम्पर टू बम्पर प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए ऐसे गाने लेके आते हैं जो आपको दिन भर आपका टेम्पो बनाए रखे। तो सुनते रहिए
0: शुद्ध देसी रेडियो सुबह 5 से 7 बजे तक भक्ति संगीत कार्यक्रम, और 7 बजे से 9 बजे तक बम्पर टू बम्पर, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: पॉलिसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।
2: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी।
1: टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट बट यू ऑल्सो अट्रैक्ट वॉट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो वॉच वॉट यू थिंक।

0: ट्रैफिक की वजह से आपकी गाड़ी का चक्का जाम है, लेकिन हमारे गानों की रफ्तार है बहुत तेज और आप हैं हमारे साथ हमारे शाम के प्रोग्राम चक्का जाम में।
1: और आप हमें सुन सकते हैं सुबह की रश आवर प्रोग्राम में जिसका नाम है बम्पर टू बम्पर।
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए and always keep smiling।

तो दोस्तों आप आई 65 पे हो या आई 40 पे हो या फिर आई 440 हो या फिर आई 24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।

0: नैशविल, फिकर नॉट जब है शुद्ध देसी रेडियो का साथ। ट्रैफिक में गाड़ी का चक्का जाम है तो क्या हुआ, हम लेके आए हैं कुछ सूदिंग गाने आपके रश आवर को आसान करने के लिए। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम चक्का जाम।
1: सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम, हमें बताते रहिए। प्लीज पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए आपके विचार, आपके लाइकिंग, एंड डू लेट अस नो हाउ वी डूइंग सो दैट वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस टू अडैप्ट टू योर लाइकिंग।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. देश से दूर पर दिल के करीब।

देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

0: लेग पीस नहीं है
1: छिपड़ा।
2: आइए सब लोग कंट्री में आ जाइए। चलो चलो चलो चलो। सो लेट्स द संगीत बिगिन। इस म्यूजिकल नाइट में खाली सॉन्ग नहीं होंगे, डांसिंग भी होगी और होगा कंपटीशन। अब ब्राइड की टीम जीतेगी या दूल्हे की, ये तो तभी पता चलेगा जब दुल्हन और दूल्हे के रिश्तेदार यहाँ पे आके डांस करेंगे। अंकित जी आइए ना, आपके शक्ल देख के लगा बहुत जबरदस्त डांस करते होंगे।

Where focus goes, energy flows. And where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows. आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
1: तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे।
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

मिल्टन एसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: can follow our Facebook page, Shuddh Desi Radio, and leave us feedback there. Download our free iOS app and log on to www.shuddhdesiradio.com for non-stop music and lots of fun.
1: पाकिस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान. सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप. वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं. एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज, सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड
1: अस. सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी. दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है.

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: शुद्ध देसी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: आई एम योर होस्ट अनिरुद्ध। कीप लिसनिंग टू योर ओन शुद्ध देसी रेडियो।

हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

0: और अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।
1: फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज, व्हाटएवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज। In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा।

0: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो अवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड लीव अस फीडबैक देयर.
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी. कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है. जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है. दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो, यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब। You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio, Desh Se Dur Par Dil Ke Kareeb।

अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।

0: your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com. It is info@shuddhdesiradio.com. And we will get in touch with you.
1: माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना. खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो.

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो, मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: शुद्ध देसी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: I'm your host Anirudh. Keep listening to your own Shuddh Desi Radio.
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन Shuddh Desi Radio. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: की फरमाइश के गाने हमें भेजते रहिए। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ बहुत ही बढ़िया गानों की, जिन्हें कि हम लेके आ रहे हैं अपने सैटरडे के प्रोग्राम में। तो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड देन वी विल डेफिनेटली प्ले देम।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: सुविचार, आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी।

आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन

आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: आपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।

इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो। शुद्ध

दोस्तों आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH स्पेस DESI स्पेस RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द

आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: दोस्तों, हमें आपकी बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट मिल रही हैं और हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, और वो भी बहुत जल्दी ही। आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और फीडबैक या कोई भी सजेशन हमारे शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।
1: आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: कहते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: हिंदुस्तानी आदमी दो चीज़ें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

सुना आपने, आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

0: आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: इस कदर तेरी बातें मेरे जहन में घूमती हैं, इस कदर तेरी बातें मेरी जहन में घूमती हैं, जैसे तेरी बातों का रेडियो सुन रही हूँ। जी हाँ, आवाज की दुनिया के चाहने वालों, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: समाप्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं शुद्ध देसी रेडियो, द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA, विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब।
1: सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb. हेलो म्यूजिक सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज. और दोस्तों, अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO, जो कि हमारे रेडियो का.

सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप हैं मेरे साथ बम्पर टू बम्पर शो में। सो लेट्स बी द ट्रैफिक इन म्यूजिकल स्टाइल।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल।
2: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ
1: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

जैसे दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टाउन एसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सुन रहे हैं मिडिल टाउन एसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आई एम गोइंग टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट, बट यू आल्सो अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो वॉच व्हाट यू थिंक।

अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी।

फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग शुद्ध देसी रेडियो.

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।
1: आओ, हेलो नेशनल। अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

0: share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक.
1: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट.

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ
1: सौदागर है, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मिडिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: किसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: सुना आपने, आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: दोस्तों सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन द साउथ ईस्ट USA।

0: तो दोस्तों, आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड में आपकी फरमाइश का कार्यक्रम। तो आपकी फरमाइश भेजना अब बहुत ही आसान हो गया है। बोलो कैसे? यू कैन डाउनलोड आवर iOS ऐप और उसमें एक फीचर है रिक्वेस्ट सॉन्ग, जहाँ पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड वी विल ट्राई टू प्ले दैट ऑन आवर आपकी फरमाइश शो। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: You guys are tuned in to our Rush Hour program, Chakka Jam. Keep on listening, keep on humming with us only on Shuddh Desi Radio, aapka apna radio.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
3: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: आंखों में ही रहना।
1: ओ लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा तू भी ना ढोल दे नाल इश्क नॉन स्टॉप।
2: शुद्ध देसी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
3: I'm your host Anirudh. Keep listening to your own Shuddh Desi Radio.

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: नया साल, हर साल की तरह हम सभी लोग कुछ न कुछ लिस्ट बना रहे होते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस ले रहे होते हैं कि इस साल हम ये कुछ नया करेंगे, ये जो पिछले साल हम नहीं कर पाए वो कुछ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी को ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। नए साल का पहला सलाम और नए साल का पहला प्रोग्राम। बात कर रही हूं मैं आज के शो में, इस शो में ना तो कोई रेजोल्यूशन की लिस्ट है ना ही कुछ परफेक्ट बनने का प्रेशर है। आज बात करेंगे रेजोल्यूशन की नहीं बल्कि रियलाइजेशन की, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिंदगी हमें हर साल कुछ ना कुछ तो सिखा ही देती है, हम सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। अब वो हम सुने या ना सुने, वो सीख हम लें या ना लें, ये हमारी चॉइस होती है। बीते साल में सीखा मैंने कि हर रिश्ते में मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, ये सवाल पूछना गलत है। हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर चुप्पी खामोश भी नहीं होती। और यहीं से आता है मेरा ये दूसरा सवाल कि अगर जिंदगी में सच में एक रीसेट बटन होता तो क्या हम किसी एक इंसान को दोबारा चुनते या हम खुद को चुनते? क्या हम वही गलतियां फिर से करते या इस बार हिम्मत करके नहीं कह देते, ना कह देते? रीसेट शायद जिंदगी में नहीं होता, लेकिन रियलाइजेशन हर दिन हो सकता है। और आज का ये सफर उन्हीं एहसासों के नाम है जो हम बदलते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, मगर हम समझदार बन जाते हैं उस प्रोसेस में। तो चलिए आज के पहले गाने के साथ सोचिए कि अगर जिंदगी को रीसेट नहीं कर सकते तो क्या हम अपनी सोच को रीसेट कर सकते हैं? तो इस सवाल के साथ ये पहला वाला गाना आप सभी लोगों के लिए दिल से देसी के नए साल के पहले एपिसोड में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी को शुद्ध देसी रेडियो पे। दिल से देसी का प्रोग्राम है। आज हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन की, नहीं आज हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन की, और बात कर रहे हैं कि अगर जिंदगी में एक रीसेट बटन होता हाइपोथेटिकली तो हम क्या करते, हमें वो रीसेट बटन चाहिए भी या नहीं चाहिए। इन्हीं सब लोग बातों की गुत्थी आज सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके साथ इस शो में। कभी कभी जिंदगी हमें चिल्ला के नहीं समझाती है, बस हौले से धीरे से कंधे पे हाथ रख देती है। और इस नए साल में लगता है कि जैसे जिंदगी हमसे पूछ रही है कि रीसेट करोगे या बस थोड़ा सा रिफ्रेश। क्योंकि अगर सच कहें तो सब कुछ गलत भी तो नहीं था पिछले साल। कुछ हंसी थी, कुछ जीत थी, और कुछ ऐसे पल भी थे जो बिना प्लान किए अच्छे बन गए, बस यूं ही ऐसे ही। रीसेट बटन का नाम आते ही ऐसे लगता है कि बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा हैवी है रीसेट कर देना, सब कुछ उठा के एक बटन प्रेस किया और सब बैक टू फैक्ट्री सेटिंग। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा चेंज करके रिफ्रेश मोड की बात करें तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो हम रिफ्रेश करना चाहते हैं वो करेंगे, जिनको नहीं, जो हमें ऐसी अच्छी लगती हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, छुएंगे उनको, टच नहीं करेंगे उनको, वैसे ही रहने देंगे, राइट? थोड़ा हल्का लगता है। और सच में जिंदगी रीसेट से ज़्यादा रिफ्रेश मांगती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि अगर हम सब कुछ मिटा दें, नया ही सब कुछ कर दें, तो फिर वो हंसी, वो जो अचानक दोस्त बने, वो बिना वजह वाले अच्छे दिन, बिना प्लानिंग किए जो अच्छे बन गए, वो भी तो चले जाएंगे ना। सबका सब रीसेट हो जाएगा और फिर हम फिर से वही इंसान बन जाएंगे जो हम शुरुआत में थे, जिसे फिर से सब सीखना पड़ेगा। तो रिफ्रेश ज़्यादा अकोमोडेटिंग मुझे लग रहा है। तो रिफ्रेश का मतलब है कि थोड़ा सा माइंडसेट बदलना, थोड़ा सा पेस कम करना, और ख़ुद से ये कहना कि सब परफेक्ट नहीं है मगर सब बेकार भी नहीं है, सब फालतू भी नहीं है। और यही सोच के साथ, इसी थॉट के साथ मैं आज का ये शो आपके लिए लेके आई हूँ। और दिल से देसी जो पूरा सेगमेंट है, इसकी सोच भी यही है, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग।

लाइफ में इस बात का रियलाइजेशन होना कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों का जो को समझ लेना, उनका रियलाइजेशन करना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, हर चीज आप सही तरीके से करें ये जरूरी नहीं है, हर चीज आप किसी को खुश करने के लिए करें ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कभी कभी लेट होना भी जरूरी होता है, ठीक है, और ये कह देना कि भाई आज नहीं हो पाएगा मुझसे काम और ये बहुत बिजी चल रहा है या वट एवर इट इज फॉर वट एवर रीजन, अपने को झोंक के उस चीज में वो कैसे भी वो काम कर देना, पूरा कर देना, और जरूरी नहीं है ये ना कहना भी ओके है। लाइफ कोई एग्जाम नहीं है कि जहां पे हर सवाल का हम जवाब दें और हर सवाल का जवाब सही हो, जरूरी नहीं है। और एक बात समझ में आनी और जरूरी है कि, और जो मुझे समझ में आई, रियलाइजेशन हुआ कि जिंदगी बिठा के, जैसे मैंने बोला है कि चिल्ला के नहीं समझाती है, कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देती है, वो छोटे छोटे मूवमेंट्स में हमें पकड़ के सिखाती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने शार्प हैं और उन मूवमेंट से हम कितना सीख लेते हैं। जैसे कि आपको कहीं से इनविटेशन आया तो जरूरी नहीं है कि अगर आप ना कह सकते तो ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है ना। या फिर कोई प्लान बन रहा हो कहीं बाहर जाने का और ऑल ऑफ सडन वो अगर कैंसिल हो जाए तो आप सोचें कि यार चलो अच्छा हुआ आज कुछ नहीं करना पड़ेगा, तैयार नहीं होना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। तो इट्स ओके, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, गिल्ट में ना रहें, सुकून से रहें। और जो ये खाली समय होते हैं जब आपने फ़ोन पे बात नहीं की या मैसेजेस के जवाब नहीं दिए या फिर आपने स्क्रॉल नहीं किया घंटों सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो जो समय बचा ना आपके पास बहुत सारा, ये खाली समय वेस्टेड नहीं होता है, बेकार नहीं चला जाता। और अगर आप, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूँ, मैं बात को घुमा रही हूँ कि अगर आप ये सारे काम कर भी रहे हैं, घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं या घंटों बात कर रहे हैं और बाद में आपको रियलाइजेशन होता है, गिल्ट होता है कि अरे बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इतनी देर में तो मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, लेकिन इट्स ओके। हर दिन आप हर समय प्रोडक्टिव रहे ये भी नहीं हो सकता, और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और कुछ अचीव ही कर रहे हैं। जब आप थोड़ा अपने आप को छूट देते हैं, रियायत देते हैं, और जब आपको ये एहसास हो जाता है कि इट्स ओके, तो वो जो इट्स ओके वाली फीलिंग होती है ना, वो बड़ा सुकून देती है और दिल को बहुत हल्का कर देती है कि हाँ इट्स ओके, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है अगर मैंने ये चीज़ें नहीं करी या ये चीज़ें कर ली। अब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, सोचें इस पे, विचार करें, ये अगला वाला गाना सुनते हुए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी को शुद्ध देसी रेडियो पे दिल से देसी साल का पहला शो। बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। बात कर रहे हैं आज हम लोग एक रीसेट बटन की, जिंदगी के रिफ्रेश बटन की। बात कर रहे हैं हम रियलाइजेशंस की और रेजोल्यूशंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर रीसेट बटन होता भी तो क्या होता। तो सबसे पहले, जैसा कि हम अपने आप को जानते हैं, सबसे पहले वो जो रीसेट बटन होता लाइफ का, हम हमेशा उसको गलत जगह पे ही दबाते। अगर मंडे मॉर्निंग है तो चलो रीसेट बटन दबा देते हैं, वापस से वीकेंड में चले जाते हैं। डाइट का पहला दिन है, जैसे कि हम रेजोल्यूशंस बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, डाइट का पहला दिन है, चलो रीसेट दबा देते हैं, गो बैक टू कल से डाइट शुरू कर देंगे। तो हम गलत जगहों पे ये रीसेट बटन दबा रहे होते हैं और फिर जो जिंदगी की जो सारी स्पाइस है ना, वो भी सारी की सारी रीसेट हो जाती। सब कुछ जैसे बोरिंग, शांत, अच्छा सा हो जाता। अगर रीसेट हो जाए तो वो जो आपने पहला चाय का पहला कॉफ़ी का प्याला पिया, वो भी रीसेट हो गया। रोड ट्रिप्स, जो रैंडम लाफ्स हैं, जो रैंडम थॉट्स हैं, जो रैंडम चीज़ें होती हैं, सबका सब चला जाएगा। और मगर ये सब छोटी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पसंद है, वो तो हम रखना चाहते हैं ना लाइफ में, वो हम नहीं जाने देना चाहते। और फिर जब सब कुछ रीसेट हो जाता, एक सिंपल प्लेन लाइन, जैसे कि आपको वो हॉस्पिटल में दिखती है ना, कि जब कोई इंसान नहीं होता, मर गया होता है, तो कैसे लाइफ की लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तो वैसे हमारी लाइफ की लाइन भी एकदम सीधी, सपाट, स्ट्रेट हो जाती है। ना तो कोई केओस है, ना तो कोई स्पाइस है, ना तो कोई ड्रामा है, ना तो कोई मज़ा है लाइफ में। एकदम डिसिप्लिन, सब एक जैसी ही, जो जो हमें अच्छा चाहिए वो हमने रख लिया या नहीं रखा, और सब कुछ वापस से बैक टू ज़ीरो। मेरे हिसाब से वो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाता, इसीलिए शायद हमें रीसेट बटन नहीं मिला, ताकि हम चीज़ों से, वाक्यों से, एक्सपीरियंसेस के साथ हम उनसे हम सीख सकें, बेहतर बन सकें। ऐसा नहीं कि बस उठा के उसको इरेज कर दिया, साफ कर दिया, चलो ये गलती हुई, चलो इसको मिटा देते हैं। और इसीलिए हम शायद इंसान हैं कि हम उन चीज़ों से सीख सकें, बेहतर बन सकें। तो इसीलिए हमें रीसेट बटन नहीं मिला, क्योंकि मिला होता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। लेकिन ये जो रिफ्रेश बटन है ना, ये हमें रोज़ मिलता है। हर सुबह हमारे पास में एक रिफ्रेश बटन होता है, जहाँ पे हम जाएं, एनालिसिस करें अपने बारे में, थोड़ा चिंतन करें और सोचें कि हम इसको, किस चीज़ को, या इस रिश्ते को, या इस बात को हम कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, खुद को हम कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा और सोचिएगा कि क्या है आपकी लाइफ में जो आप रिफ्रेश करना चाहते हैं। रीसेट नहीं, क्या है ऐसा जो आप रिफ्रेश करना चाहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा गाना

और इस साल दोस्तों एक और बात समझ में आई पिछले साल कि इस रिश्तों को लेके भी एक हल्की सी समझ आई और होनी चाहिए कि हर रिश्ते को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर रिश्ते को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ रिश्ते होते हैं ना, वो बस महसूस करने के लिए होते हैं। जैसे कुछ लोग बस अच्छे ही लगते हैं बिना किसी रीज़न के, बस वो वहाँ पे हैं और वो रिश्ते पसंद हैं, वह वो कुछ लोग हैं वो आपको बस पसंद हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो खड़े हैं बस वहाँ पे, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो आपको पसंद आते हैं। तो उसमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसने क्या किया या उसने कभी अच्छा किया या बुरा किया, वट एवर, क्यों, क्या, कुछ नहीं। जस्ट फील द पर्सन या फील दैट रिलेशनशिप। और कुछ कॉन्वर्सेशन बस हल्की होती हैं, उनको हैवी बनाने के लिए, हैवी डोज कर देने की ज़रूरत नहीं होती है। टेक इट ईजी। कुछ लोग कम मिलते हैं पर हर बार अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग रोज़ मिलते हैं मगर वो हर बार उतने ही अच्छे लगे ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कब ऐसे बोला, क्या, उतना एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा वो अच्छा नहीं लग रहा। इट्स जस्ट कीप इट दैट सिंपल। जब हम सोचने के लिए, जब हम उसके ऊपर में उधेड़ बुन में चले जाते हैं ना कि अरे इसने, मैंने ऐसे बोला था, उसने वो बोला था, तो उसने वो सोचा होगा और मैंने ये सोचा, ये वो ख़राब कर देता है सब कुछ। ओवर थिंकिंग या ओवर रियलाइजेशन चीज़ों को ख़राब कर देती है, क्योंकि ये सब ना हमारे दिमाग में ही कहानी बन रही होती है और एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो चीज़ों को हल्का रखें, रिश्तों को हल्का रखें, एनालाइज ना करें। और मैंने ये बात समझी है कि ऐसे ही करना चाहिए, और ये समझ में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी फ्रीइंग मूवमेंट हो जाता है। आप बहुत फ्री हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो वो सारे केओस और वो सारे ड्रामास के साथ में, कि हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता और टेम्पररी भी मीनिंगनेस नहीं होता। फिर से बोलूँगी मैं एक बार कि हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता और कोई भी टेम्पररी चीज़ मीनिंगलेस नहीं होती है। लेट दैट सिंक इन।

0: आप सुन रहे हैं नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: जी हाँ दोस्तों, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जब आप सुन रहे हैं शुद्ध देसी रेडियो पे दिल से देसी का प्रोग्राम विद योर होस्ट एंड दोस्त शालिनी। रियलाइजेशन की बात कर रही थी मैं इस गाने के पहले, मुझे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि खुद पे हंसना आना चाहिए। कभी हम डिफिकल्ट हो जाते हैं, ड्रामा कर जाते हैं, कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। और अगर कभी आप अपने पुराने फोटोज़ निकाल के देखें, पुराने चैट्स अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने किस तरीके से रिएक्ट किया किसी बात के ऊपर या चैट्स के ऊपर या किसी के साथ बात हो रही है या वो जो फनी फोटो या जो भी आपने पुराना निकाल के देखा अपना खजाना, अगर आपको अपने पुराने रिएक्शंस देख के थोड़ा सा क्रिंजी फील होता है या हंसी आती है अभी अपने ऊपर कि अरे क्या मैं फालतू के जैसे मैंने रिएक्ट किया या मैंने क्या बकवास मैंने बोला, क्या मैं आई वॉज सच चाइल्डिश पर्सन, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है अपने खुद के जवाब या खुद की बातों को सोच के, तो आप खुश हो जाइए कि मतलब कि आप वही इंसान नहीं रहे, इन द सेंस कि आप और बेहतर बन चुके हैं, आप अपनी चीज़ों को देख रहे हैं और आपको उनके ऊपर में हंसी आ रही है। नाउ दैट्स नॉट दैट इतना गंभीर मुद्दा नहीं लग रहा अब आपको जो कि वो उस समय लग रहा था, या आपने जिस तरीके से उस वक्त रिएक्ट किया आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये इटसेल्फ में मुझे ग्रोथ लगती है। और मेरे साथ में काफ़ी ऐसे बार होता है कि जब मैं पीछे जाके देखती हूँ या सोचती हूँ कि मैंने ऐसे जवाब दिया या मैंने ऐसे सोचा था उस वक्त, लाइक कि अवश्य फूलिश पर्सन, क्यों मैंने ऐसे बोला या मैंने ऐसे क्यों सोचा। नाउ आई फील लाइक कि अभी मेरी सुपर ग्रोथ हो चुकी है एंड देन आई जस्ट लाफ एट दैट थिंग। तो जब ग्रोथ की बात मैंने कर ही दी है, तो ग्रोथ ऐसे ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसे नहीं होता है कि अब हम कल सो के उठे और हम वी आर अ चेंज्ड पर्सन ऑल टुगेदर और एक कुछ ड्रामेटिक चेंज हो गया है। ग्रोथ छोटी छोटी चीज़ों से आती है। कभी आपने किसी चीज़ पे रिएक्ट ही नहीं किया या कम रिएक्ट किया, या अगर एक चीज़ का आपको एक दूसरा पहलू समझ में आ गया, वो एक ग्रोथ है। और अगर आज आपने खुद को थोड़ा आसानी से माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया, वो भी एक ग्रोथ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हर दिन सोचें और समझें और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लें, समझ लें और अपने ऊपर अमल कर लें, तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों में ग्रोथ होती है। एक दिन ऑल ऑफ सडन दिन से रात नहीं होता, घंटे लगते हैं, मिनट लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं। वैसे ही अपनी ग्रोथ में भी, अपनी चीज़ों को रियलाइजेशन करने के लिए भी वक्त लगता है, और वो वक्त हमें और आपको अपने आप को ज़रूर ज़रूर देना चाहिए। ले चलती हूँ आपको इसका बहुत खूबसूरत सा एक गाना जो कहता है कि ऑल इज़ वेल।

ऑल इज वेल, दिल से देसी पे सब ऑल इज वेल ही होता है दोस्तों. विद योर होस्ट एंड दोस्त शालिनी, आप सुन रहे हैं आज का स्पेशल प्रोग्राम. बात कर रही हूँ दो तीन चीज़ों के बारे में. बात कर रही हूँ रीसेट बटन की, बात कर रही हूँ कि रीसेट बटन के बजाय हम रिफ्रेश बटन चूज करते अगर ऑप्शन होता तो. और बात कर रहे हैं कुछ छोटी छोटी बातों के रियलाइजेशन के बारे में, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए. रियलाइजेशन से एक और पॉइंट याद आता है, एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस का वॉल्यूम हमारी लाइफ में ना लो ही होना चाहिए. हम अक्सर जिंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, प्लान से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और तो और हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो क्या होता है, डिसअपॉइंट का जो वॉल्यूम हो जाता है लाउड. इस साल ये सीख मिली कि एक्सपेक्टेशंस का वॉल्यूम थोड़ा कम करना चाहिए और अप्रिसिएशन का वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशंस कम और अप्रिसिएशन इन लाइफ ज़्यादा. क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादा देर तक साथ रहती हैं. और आप नोटिस करेंगे कि ज़िंदगी अचानक कुछ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, खूबसूरत लगने लगती है, काइंड लगने लगती है. और एक्सपेक्टेशंस के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अच्छा ठीक है, उम्मीद रखना, एक्सपेक्ट करना. कहने का मतलब यह कि इंग्लिश में अगर मैं समझाऊं तो एक्सपेक्टेशन और बीइंग होपफुल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. एक्सपेक्टेशन में आप एक थॉट रहता है कि ओके आई हैव डन दिस एंड दिस शुड बी द आउटकम ऑफ दैट थिंग. होपफुल में यू वो जो आउटकम वाली बात होती है ना, वो होती ही नहीं है. यू जस्ट बी होपफुल कि आज का मेरा दिन अच्छा होने वाला है, या मैंने एग्जाम अच्छा किया है और आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड आई एम होपफुल कि बेस्ट होगा. अब वो बेस्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक्सपेक्ट वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन वाली बात आ जाती है कि अरे मैं पास हो जाऊँ, मैं फेल ना हूँ, और ये नहीं हो और वो नहीं हो. वो एक बहुत ही बारीक सा फ़र्क है एक्सपेक्टेशन और बीइंग होपफुल में. मुझे लगता है इसके बारे में मुझे एक शो करना चाहिए कभी बाद में, लेकिन अभी रियलाइजेशन की बात में मैं यही बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन मैं बहुत करती हूँ, हम सारे लोग ही करते हैं. चीज़ों से और सिचुएशन से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें चाहिए होता है कि एक सिचुएशन इस तरीके से इसका आउटकम होना चाहिए, फिर वो वैसा नहीं होता, देन इट कम्स बिकम्स डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन राइट देयर. तो वो थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन मुझे आ रहा है. अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको भी ऐसे कुछ नगेट्स इधर उधर मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये शायद मेरे लिए यूज़फुल हो जाएगा, अगर आप उसको आत्मसात करें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और कुछ थोड़ा सा भी अगर चेंज हो आपकी लाइफ में इस मेरे प्रोग्राम की वजह से, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. और ये शो करते हुए तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अब ले चल रही हूँ आपको अगले वाले गाने की तरफ.

भी चीज में खुशी मिल सकती है। कभी गाना फुल वॉल्यूम में चला लेना, कभी एक कप चाय में दो चम्मच चीनी डाल लेना, बिना वजह कभी किसी को यूं ही बस कॉल कर लेना। ये जो थोड़ा सा जो जॉय है हमें लाइफ में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना चाहिए। एक और बात जहन में आ रही है कि हमें बहुत लोगों को लगता है कि अरे हमने काश ऐसे कर लिया होता या वैसे कर लिया होता, हम लेट हो गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। जो लेट होने वाली बात है ना, लगती हमें लाइफ में कि करियर में है, रिलेशनशिप्स में है या जिंदगी में है, हम लेट हो गए, कहीं हम लेट ना हो जाएं या हम लेट हो गए। तो ज़रा रुकिए, थांबा, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई घूम के चार चक्कर लगा के आता है। तो लाइफ कोई रेस नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट है और ये आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा गाना कब बजेगा और आप कब क्या सुनना चाहते हैं। तो देर इज़ नो रेस, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, इट्स ऑल ओके। और थोड़ा पहले मैं बात कर रही थी एक्सपेक्टेशंस की, होप की बात कर रही थी। उम्मीद हमेशा शोर करके नहीं आती है, कभी ये सुबह की धूप में होती है, कभी चाय के पहले सिप में होती है, कभी ये कोई सिंपल सा मैसेज कि सब ठीक हो जाएगा। होप लाउड नहीं होती है पर कंसिस्टेंट होती है और वही आगे हमें लेके जाती है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन होप एंड एक्सपेक्टेशन, जो मैं बात पहले कर रही थी। मुझे लग रहा है मैं आज बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाना चाह रही थी और ये थोड़ा सा हैवी डोज होते जा रहा है, लेकिन अभी सुना देती हूँ आपको एक बहुत खूबसूरत सा ये अगला वाला गाना, इसे आप सुनिए और मुझे बताइए कि आपको आज का शो कैसा लग रहा है।

और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस साल कोई भारी रेजोल्यूशंस मत उठाइए, बस इतना तय करिए कि खुद से थोड़ा नरम रहेंगे, जिंदगी से लड़ेंगे नहीं और खुशियों को पोस्टपोन नहीं करेंगे। आज के गानों के बीच में शायद आपने महसूस किया होगा कि जिंदगी हमें बार बार नए मौके देती है, लेकिन हर दिन कुछ नया सिखा भी जरूर जाती है। रीसेट बटन नहीं मगर पॉज बटन तो है, जहां हम रुक कर खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था या बनना चाहती थी, क्या मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जहां पे मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेफ महसूस होता है। इस साल कोई भारी वादा मत कीजिए, बस इतना तय करिए कि जहां इज्जत नहीं वहां रुकना नहीं, जहां सुकून नहीं वहां ठहरना नहीं, और जहां प्यार है वहां डर के बिना रहना। शायद यही सबसे खूबसूरत रियलाइजेशन है। और अगर कभी लगे कि सब कुछ फिर से शुरू करना है तो याद रखिए, हर सुबह एक छोटा सा रीसेट बटन होती है, एक छोटा सा रिफ्रेश बटन होती है, बस दिल से दबाइए। और मैं शालिनी, और ये था दिल से देसी का प्रोग्राम, जहां बातें दिल से होती हैं और गाने जिंदगी जैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं नए एहसासों के साथ, और आपको छोड़ के जा रही हूँ इस प्रोग्राम के इस आखिरी गाने के साथ।